0: Radiation, the number one station for the Bargle Asian. Bargle Asian.
1: क्या हुआ बेटी? क्या बात है?
2: अंकल, अब विशाल, विशाल प्लॉट नंबर 13 में फंस गया है।
1: क्या हुआ विशाल को?
2: अंकल, अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
1: अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
3: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सक्सेना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
3: क्या कहा? प्लॉट नंबर 13?
1: जी हाँ।
4: प्लीज जरा जल्दी आइए।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
0: Dev, respect to you, bro. Plot number tera, plot number mera. That's what I'm trying to get at. Number mera. But yeah. Press the button correctly. This track, Verdian. The last track. Got a message coming. Wang, Lundi the Bawa, Desi Crew, Bunty Baines, on My Roots. This track over here, Verdian, just means enemies. Explicit lyrics warning. X Fader. So X, who's he on the track with? X Fader featuring Rumu Hans. Okay, let's do it. Let's go. Always here to support, man.
5: Radiation, the number one station for the Bargle Asian. Bargle Asian.
6: One time.
7: You better be looking behind you when you walk.
8: Do it.

0: मेरी माँ ने मेरे को कैलकुलेटर दिया था। आ कोई एमीटर कैलकुलेटर नहीं सीखा, आ टेक्सस इंस्ट्रूमेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर सीखा, बड़ी प्रोफेशनल थी। मैं दो तीन महीने वास्ते मंगता सीखा, चंगी तरह माँ ने तंग कर दिया, माँ ने पता सीखा, मेरी आदत नहीं चीजा मंगने। जो माँ ने मैंने इतना बड़ा तोहफा दिया कैलकुलेटर, मैं फटाफट जाके उन्होंने चप्पी मारी, पता उन्होंने की किया, वो वापस मैंने चप्पी मारी। हमेशा मैं सोचता सी मेरी माँ मैंने प्यार नहीं करती, मेरिया छोटिया पैरों ने हमेशा चप्पियां मार दी थी, पर मैनू नहीं।
1: I told my girl I was on radiation.
2: मेरी कुड़ी ओदी सेहत ठीक नहीं, अद्धी रात मिनी स्कर्ट पाके क्लबां च चीका मार के टपदी आ।
3: कोई ना वीरा, असी डिजायर्ड इफेक्ट नु सदूंगे।
4: उपड़ वाले का ना जप्पो, किसी ने मैनु बुलाया, 500 पाउंड मैनु दान कर लो, नाल सारे तेरे दुख दूर हो जाऊंगे। तेरी पार्टी हार्ड कुड़ी दा कमरा किथे आ?
2: इत्थे आ उपड़, 10 दिनां च एक रोटी दी बुड़की खाई नहीं, बस बर्गर चिप्स चबी जांदी आ।
4: अच्छा, इनिशियल डायग्नोसिस, शक्ल इज रादर पैड़ी and top lip very hairy, 2,000 pound दान कर लो, मेरे नाल जप्पो,
5: the power of radiation compels you, random guys of Soho Road compel you, pearly uncles with x-ray glasses compel you, to leave this girl's forsaken body, so she's free to dress sensibly and dance to proper music on
6: radiation. The number one station for the Bogle Asian. Bogle Asian.
7: Hi, yeah, I just left the date. And I don't know, am I asking for too much? Like, this guy was really cute and he was a musician.

0: देण।
1: रेडिएशन द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन
2: Still bangles.

0: Radiation, the number one station for the boggle for Asian.
1: क्या हुआ बेटी? क्या बात है?
2: अंकल, अब विशाल, विशाल प्लॉट नंबर 13 में फंस गया है।
1: क्या हुआ विशाल को?
2: अंकल, अंकल, वो औरत नहीं है, वो एक प्रेत आत्मा है। अंकल, अगर विशाल को बचा लीजिए, नहीं तो डायन उसे मार डालेगी।
1: अच्छा, अच्छा, एक मिनट, एक मिनट।
3: हाँ, इंस्पेक्टर बलदेव स्पीकिंग।
1: देखिए मैं गुलमोहर लेन प्लॉट नंबर 12 से सत्या ना बोल रहा हूँ। यहाँ प्लॉट नंबर 13 में एक औरत मेरे बेटे को मार देना चाहती है।
3: क्या कहा? प्लॉट नंबर 13?
1: जी हाँ।
4: प्लीज जरा जल्दी आइए।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ।
2: चलिए
0: बलदेव, रिस्पेक्ट टू यू ब्रो। प्लॉट नंबर 13, प्लॉट नंबर मेरा, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट, नंबर मेरा। बट या, प्रेस द बटन करेक्टली। दिस ट्रैक Very on. The last track, got a message coming. Wang Lundi the Bawa. This is crew Bunty Baines on My Roots. This track over here, Very on, just means enemies. Explicit lyrics warning. X Fader. So X, who's he on the track with? X Fader. Featuring Rumu Hans. Okay, let's do it. Let's go. Always here to support, man.
5: Radiation, the number one station for the boggle of Asian.
6: One time.
7: You better be looking behind you when you walk.
8: Do it!

0: ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का वक्त खत्म हो चुका है। इस मुकदमे का फैसला अगले महीने की 18 तारीख को सुनाया जाएगा।
1: ओह, मेरे कत्ल की पूरी तैयारी कर ली तुमने?
2: तुम भी कातिल, हम भी कातिल। अब वक्त जाया मत करो, अपने जिस्म को इन कपड़ों की कैद से आजाद कर दो। तुम्हारी जवानी की किताब को करीब से पढ़ना चाहता हूँ।
3: रेडिएशन, द नंबर वन स्टेशन फॉर द पागल एशियन। पागल एशियन,
4: व्हाट द, यू ऑलवेज से no one has sent in or referenced a line more pervy or lecherous than that one. That's what I'm trying to say. And you know, you can go to the Punjabi butchers, whatever it is, if you eat meat in a restaurant, and you know there's always someone horny there, yeah? Right at the end, like, they're looking over at, oh, looking at your girlfriend, whatever it is, man, it's just too much. Anyway, Mukaddama, Jazzy B, Sukhchindra Shinda, Local Attraction. And Radiation, the number one station for the Asian invasion. Let me hit you with this, yeah. Brain is fully firing up. It's Diary by Bottom. Here we go.
3: Radiation, the number one station for the Pagal Asian.